मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पाव है मोख द्वार मन्ने परवार है सदा और मन्ने तराए तारे गुरसिख मन्ने नान पव है न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवाण पंच

है त्रमान है निदान है त्रवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है आजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूर है अचंज है अमीक है रफीक है तंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंभ है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है आलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है

नमो रोग रोगी नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता दूर दर्द अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरम प्रोश पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात शांद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृत्संग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी

निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रमा है, सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, आपे दियन उपे समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है।

त्रिभुक्त स्वरूप है, अशिज है, अशूत है, कि नर्क प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, नोक प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रजोक्त।

नर नायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंभर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्पायक हैं, पाप भंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मबस हैं, जस के जस हैं, पुजंग प्रयात छंद

नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंक नमो आशासे नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शन अजय अलय अभय अभय अभुआ जुआ नासा कासा गंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ प्रमाथ अजोनी अमोनी नरागि नरंगे न रूपे न रेखे कर्म अपर्म अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणा

तीर्थ नहन दया दम दान ससन निम्ने मान एक दशेख है वेद पुराण कदेव पुराण जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सब है सुविचार हजार कदेख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिनु एक ना लेख है।

आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को परमो बद कियो। काट काट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पिशांत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

चौपाई संबत 17 सहस पण जय अर्थ सहस फुंतीन कहे जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सुबैया।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर त पाया सह सेती मन वजियां वादा हियां राग रतन परवार परियां

सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक बेख परसन आया लाभ लो अंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तेने अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली चाला निराली भगता किरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही।

हर गाव मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्या पाए गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जा पाए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हरस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो।

हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया, अनुदिन हर

Aquí, que voy a con el diputado. A mí no se me ha ponido más de mala dicha, a pedir que se sepa, yo creo que... Rango chelulí, pepe rango chelapea, vari, yo vari, nerpa. Nerpa, te haya, porque pollo, sabor, taraunera. Taya, papi, haya. जी बताऊ किसी ने सुझाए मन लगाए नहीं बुझाए मन कर्म करे नहीं भाई मेरा नाम है जन्म गोपाव ने पूरे गुर पाइये मुगत बारू अंदर बनी सुनाए सजराते रंग रंगावनी हर सजराती रंग लाई मन तान मोहया जय जय भाई मिलावनी रंग सुई गुण गावे गुरु के हाँ भले सदा तन बैठा हूँ मुर्सी बजे तला पीजे गुरु प्रजाति अंदर पीजे मैं जतान हर गुण गावे आपे कार सत मन आवण सेवें बड़े बड़े कोई गुरमुख बेगा मोर्चा ना लागे जा हूँ मैं ना देखा जाए गुरु कृपा कर मेला रे आ जय जय जय भावने गुरु जय जय देव लाए दूजा परम गुरु शब्द निराया काया अंदर बन करे बारा नाम दान जय भावने ये से जा रहा गुरु मोबाइल में दा उनवा मैं गुरु जय भाई गुरुदेव जी देव राय सच बन जाए सच हाँ हरि जो हरि हम राव मेरा भाई सच बड़े आई गुरु कृपा ते सच पावने बाबू जी तो गुरु डे भाई राजू मान बजाए सच तो सच जो पानी पूरे करते पावने मुरकंद गवारा फिर वे कथा पायन मुख द्वारा अमर मर्ज में यार जाने था आप जाने मेरा बाणी जरूर बचाना ऐसी जीव जरा जग पायन नौ निध नाम मन बचावने हर गुण गाया अच्छा निर्मल नाल बजावने आ गुटी रह गुड़ा फिर देर राती मर जन मैं जन्म को भावनिया जुजा जाए मैं तो फेरा गुरु शब्द अधारा नानक राम मिले बड़ी आई दुख सुख सम कर जानने आ माज महला तीजा तेरी अखाणी तेरी बाणी बिना वैसे परम पुलाने गुरु जी पते ना बिन सतगुरु कर हर चीज जीत लावने हर सच्चा गुरु बोधी में ऐसे जी मन में चलने रहा वर लागा तिया भर भाई सर को दादा जगना मधुगा पूरे पाक मिला बने हैं ऐ हो यहाँ तो आई अंतर में लागी बहुत ऊँचे पाए ती तीर से शंत्र पर वह अंकारी और वगैरह जीत मरा हर सिंह चितलाए हर निर्मल सोच मेरा न लगे सोच लगे मेरा वारा अज्ञानी
ਉਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ।